आपका शौक क्या है, इसके खातिर आपको कुर्बानी भी देनी पड़ती है, पर समझिए इस तरह से आपके शौक का इम्तिहान भी हो जाता है। अब देखें, शोनॉन चक्रवर्ती, शोवॉन चक्रवर्ती तरबियत याफ्ता यानी ट्रेंड हैं किस में, रविंद्र संगीत में, कोलकाता के रहने वाले हैं, तो समझ छात्रों को पढ़ाते हैं, रविंद्र संगीत सिखाते हैं। तो 6 साल पहले अचानक कोविड की महामारी ने इनका काम छीन लिया, हर एक का काम गया था कोविड में है। तो ये टीचर थे रविंद्र संगीत के, स्टूडेंट्स चले गए, फिर ढूंढते ढूंढते क्या किया, कहते हैं कि मैं घर तो नहीं बैठ सकता, तो समिन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। पर देखे समिन कैसे लोग एक दूसरे से धोखा करते हैं समिन। तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती, तो किसी ने देखा होगा कि हमेशा बैठे बैठे ये गाता है रविंद्र संगीत का, कोई ना कोई जिस पर आधारित हो गाना गीत तो गाता है, लोग सुनते होंगे। एक दिन एक शख्स आता है तो उसे कहता है कि आप तो इतना अच्छा गा लेते हो रविंद्र संगीत, चलिए मैं आपकी वीडियो ले लेता हूँ। तो ये काम पर थे तो कहने लगे हाँ हाँ मैं गाता हूँ, आप लीजिएगा मेरी वीडियो। देखिए समझने एक धोखेबाज और एक सच्चे शख्स में कितना फर्क है। तो वो सारी सुना देता है कंपोजिशन जो है, और वो बना के वीडियो समझ क्या करता है, उसके मालकैन को भेज देता है, जो एम्प्लॉयर है ना, कि ये देखो वर्दी में आपका ये मुलाजिम क्या कर रहा है। तो वो जो बड़े हैं सिक्योरिटी कंपनी के, वो बुलाते हैं इसको और कहते हैं कि ये तू क्या करता है, तुझे अपना काम नहीं करना, काम नहीं करना, तू जा, और उसको एक्चुअली फारिग कर देते हैं। फिर बेरोजगार, लेकिन समिन शोवॉन चक्रवर्ती ने गाना नहीं छोड़ा, काम एक तो वैसे ही चला गया, दूसरे किसी धोखेबाज ने जाके उनको बता दिया मालिकों को, ये देखो ये काम कम कर रहा है और गाने ज़्यादा गा रहा है। खैर वो काम भी चला गया, सोशल मीडिया पे उसने अपनी कहानी सुना दी कि ये हुआ है। सर सोशल मीडिया पे लोग इसके साथ हमदर्दी का इजहार करने लगे, 6 स्टूडेंट्स मिल गए शोवॉन को, 6 स्टूडेंट्स कि जिनको वो सिखाएगा, उसकी आमदनी भी होगी। तो समझ इतना पसंद करते हैं ये रविंद्र संगीत को, तो उसे नहीं छोड़ा, संगीत को नहीं छोड़ा, और इसी वजह से आपको काम भी मिल गया। तो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ पूछा तो कहने लगे मुझे समझ नहीं आती अभी तक कि क्या गाना जुर्म है, इसके लिए मेरी नौकरी चली गई, क्या हुआ। खैर जो भी हुआ अब वो फिर से टीचिंग कर रहे हैं। तो समन गणेश की मुझे एक आरती मिली है

0: गणेश की आरती थी ये. आप फैमिलियर हैं, मतलब कि आपने सुनी हुई है पहले या नहीं सुनी, अच्छी लगी नहीं लगी? नहीं नहीं तो नहीं ना हो सकता, अच्छी लगी होगी तो आप बता सकते हैं. खैर यहाँ वाह वाह परवीन जी, माय फेवरेट सॉन्ग इससे पहले जो था. और लखबीर आपने कहा है, आपने लिखा, इफ यू सक्सीड इन डिसीविंग समवन डोंट थिंक दैट ही इज अ फूल, रियलाइज हाउ मच ही ट्रस्टेड यू. बहुत खूब, बहुत खूब लखबीर, बिल्कुल. कहते हैं अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं, ये ना समझें कि वो एक बेवकूफ अहमक है, ये सोचें कि उन्होंने तुम पर कितना एतबार किया. ग्रेट. और आज गणेश को लेकर आते हैं और घर में, ओ घर में बिठाते हैं, अच्छा घर में रखते हैं गणेश को, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपने पानी में सबमर्ज करना है तो फिर बहुत बड़ी खबर होती है. ओके बीना पटेल, आज के दिन हम घर में लेकर आते हैं उनकी मूर्ति को, इसलिए इस आरती में भी मूर्ति का जिक्र था. कोकिला फ्रॉम यूके, गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं परवीन जी. एंड आई कैन मिस ब्रेकफास्ट एंड लंच बट आई कांट मिस योर लवली प्रोग्राम. क्या बात है, सो हैप्पी टू हियर दैट कोकिला फ्रॉम यूके. और साथ चलते हैं रुई रू से, मैंने ज्योति की फरमाइश पूरी कर दी. उन्होंने कहा था हर मंगल को मुझे ऐसा कलाम चाहिए जिसका ताल्लुक धर्म से हो, चाहे वो कोई भी मजहब हो. ओके अच्छा, जय देव आरती, मज़ा आ गया. या चलो उनको तो पसंद आई, ज्योति फ्रॉम रूरू. अमीर अली राणा, परवीन जी द स्टोरी ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड हु जस्ट एम्प्लॉय इज वर्क बाय सिंगिंग एंड हार्मिंग एनीवन, द जेलसी ऑफ पीपल हु कैन नॉट स्टैंड एनीबडी हैप्पी. ये बिल्कुल सही है अमीर अली, देखें कैसे उसने धोखा दिया बेचारे वो गार्ड को. रविंद्र संगीत का वो इतना था मदाह, इतना उसको जुनून था कि वो वैसे ही गाता था, उसने कभी सोचा नहीं कि धोखेबाजी के लिए रविंद्र संगीत की एक एक मतलब के जो है कॉम्पोजिशन वो ऐसे इस्तेमाल होगी.
1: Kenya's premier Asian mix,
2: East FM,
1: celebrated from South Sea, Parklands to Westlands.
2: East FM,
1: Kenya's premier
2: Asian mix.
1: All the favorite songs you grew up listening to. And the premier mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: रोज़ साढ़े नाल जुड़ो गुरबानी प्रोग्राम अते गुरमुख विचारां वास्ते सवेरे 6 बजे तो लैके 7 बजे तक. स्टार्ट योर डे विद पीस एंड डिवोशन. द ईस्ट अफ्रीकन रामगढ़िया बोर्ड ब्रिंग्स टू यू रिलीजियस प्रेयर्स. ट्यून इन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस डिवाइन जर्नी एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 6 AM टू 7 AM ऑन ईस्ट FM. ब्रॉट टू यू बाय द ईस्ट अफ्रीकन रामगढ़िया.

पटेल ने कहा है कि ये बंद कर दिए गए हैं, बिल्कुल सही। और फातिमा कासम अली ने भी कहा है कि इनको बंद कर दिया गया है। एमएल विश्वकर्मा, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ डैश अनअप्रूव्ड। इनकी इजाजत नहीं मिली हुई थी, अनअप्रूव्ड थे, पर अनअप्रूव्ड तो रीजन है ही नहीं। कृष्ण सरोय ने कहा है कि जो मुसलमान रहते हैं भारत में, उनकी तालीम का मायार बहुत कम है, गिरा हुआ है उनकी तालीम का जो एजुकेशन लेवल है वो ठीक नहीं है, तो इनको फिर बंद करना पड़ा। समझ, रीजन तो कुछ और है। सोनल मोदा, करेक्ट आंसर। तो रीज़न क्या है वो आप अभी नहीं बता सकेंगे, थोड़ी देर के बाद मैं ही बता दूंगी, लेकिन आप कोशिश करें। और कृष्ण सरोवर के बाद लंदन के बाद मैनचेस्टर से भास्कर पटेल कहते एक गाना बेबी आपने सुनाया, मेरा फेवरेट। बस आप इंजॉय करें भास्कर,

और दीपक वटगामा कहते हैं दीज वर अनरेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस. ओके, लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो ही कह देते और ठीक ही होता है. ये बाकी की चीज़ें तो डोंट मेक सेंस. अगर आप बड़ा रीज़न दें कि क्यों बंद किया गया इनको, तो फिर ये बाकी की छोटी मोटी चीज़ें डोंट मेक सेंस. बीना पटेल, बिल्कुल सही है आपका जवाब. और रितु गुप्ता, आपने ठीक कह दिया है जो जवाब दिया है. और समिन, जवाब मैं सिर्फ एक गाना सुनाती हूँ उसके बाद देती हूँ.

0: अश्विन मनाडे को बहुत अच्छा लगा होगा ये गाना गाते
1: हुए. यस यस और बहुत अच्छी तरह से गाना गाया
0: जी जी.
1: ये थी फिल्म परिंजी रात और दिन.
0: वो रात और दिन ओके
1: जिसमें नरगिस और प्रदीप कुमार एक्ट कर रहे थे.
0: अच्छा
1: रात और दिन का मतलब नरगिस का डुअल पर्सनालिटी थी.
0: अच्छा
1: दिन को शी वाज ए हाउसवाइफ, नाइट टाइम शी वाज ए नाइटक्लब गोअर.
0: ओहो
1: या ऐसी ऐसी स्टोरी थी परिंजी.
0: अच्छा
1: साइकोलॉजिकल.
0: तो क्या ये नरगिस का आखिरी गाना था रिकॉर्डिंग?
1: या ये नरगिस की आखिरी फिल्म थी.
0: हाँ आखिरी फिल्म जी.
1: एंड फिल्म हिट हुई और क्लासिक में उनका इंक्लूजन हुआ है.
0: ओ वाकई वाकई
1: और यस. एंड नरगिस वांटेड टू एक्ट इन सच ए मूवी सॉर्ट ऑफ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल स्टोरी.
0: अच्छा ओके
1: तो ये बात थी.
0: पर ये आम नहीं होता, ये आम कंडीशन देखी नहीं जाती है ना.
1: होती है होती है. या स्ट्रेट पर्सनालिटी जो बोलते हैं ना.
0: हाँ
1: कोई आदमी इनको बहुत अच्छा हो रात को वो चोर डाकू बन जाता है.
0: जाए, हाँ बिल्कुल राक्षस.
1: वो करता नहीं है उसका साइकी ऐसी होती है.
0: ओके
1: होती है. यू कैन बी इट कैन बी क्योर्ड
0: क्योर्ड है ना.
1: यस तो ये टॉपिक पर ये फिल्म
0: बनी थी. ओके
1: यस
0: रात और दिन
1: और म्यूजिक शंकर जयकिशन का था.
0: अच्छा ये शंकर जयकिशन. ओके
1: यस
0: कमाल. ओके
1: ओके थैंक
0: यू अश्विन. रात और दिन की बात है लेकिन है पर्सनैलिटी की बात. शमीम भट्ट बहुत शुक्रिया. यूसुफ भट्ट बहुत शुक्रिया. और जितेंद्र ने भी कुछ कहना है उनका भी शुक्रिया अदा कर देते हैं.
2: हेलो प्रवीण जी, आज श्री गणेश जी उत्सव जी सारे ने बहुत बहुत मुबारक. गाना भी बहुत सोहना सिलाया. मौसम बहुत सोहना मौसम है. सारी नेचर ते दस्या है. थैंक यू जी.
0: मौसम क्या बहार है जी. जी जितेंद्र बहुत मेहरबानी. और आपने कहा है विशिंग हैप्पी चतुर्थी टू ऑल. और ये हैं के कल्पना कुलकर्णी कुमार. क्या आपको पता है आज के दिन चांद को देखना मना है? अच्छा आज के दिन चांद को देखना मना है. समझ मुझे बताएं अगर आप इत्तफाक करते हैं इस पे तो ठीक है. क्यों? खैर नीला शेत ने भी गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद पेश की है सभी को. और मनहर पटेल देखा रहे हैं, वो कहते हैं ये देखो मैं स्केटिंग कर रहा हूँ. जी हाँ बर्फ में खड़े हैं बिल्कुल. और मुनासिब गियर पहना हुआ है दक्षा और मनहर ने. कहीं बर्फ में भी स्केटिंग कर रहे हैं. अच्छा तो समीन वो जो आंसर था मदरसों का था. मदरसे बंद कर दिए गए हैं वेस्ट बंगाल में 252. वो कहते चलने नहीं देंगे मदरसे. बात यह है वो कहते हैं कि आतंकवादी यहां से निकलते हैं. अगर किसी मदरसे से एक आधा आतंकवादी वादी निकला भी है बाकियों को तो इजाजत होनी चाहिए ना ऑपरेट करने की.
3: इट्स 11:24.
4: Find trusted world-class healthcare right in your neighborhood. Aga Khan University Hospital is bringing specialized care closer to home with convenient clinics at Peponi, Muthiti, Rapta Road, Mountain View and our new executive center in Gigiri. From cardiologists, pediatricians and gynecologists to full diagnostic labs, pharmacies and even home care services, we've got your whole family covered. Book your appointment today. Call 0730-011-888. Aga Khan University Hospital. World-class care, here and now.
3: Do you have a comment or complaint about East FM, one of our programs, or a segment of a program?
5: There are a number of ways you can make a complaint or comment. You could send us an email to complaints@radioafricagroup.co.ke or call us on 0711 046 000. Your complaint will be investigated and a response sent to you within 14 days. Just remember to keep a copy of all communications between you and us. We listen to you because you listen to us. East FM.
6: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
7: East FM.
6: East FM. East FM.

0: आपकी आंखों में, अब देखें कि आपने क्या कहा है। मीरा कहती है, ये मीरा है।
1: नमस्ते प्रवीण आदम, कैसे हो आप? यस, आज चांद को देखने से कलंक लगता है।
0: अच्छा, मीरा ने कहा है कि आज अगर आप चांद की तरफ देखेंगे तो कलंक लगेगा। उफ, ये मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन अगर है तो फिर चांद की तरफ आज नहीं देखना।
2: मैं नफरतों के जहां में रहकर जुदा रहूंगा तो क्या करूंगा, मैं नफरतों के जहां में रहकर जुदा रहूंगा तो क्या करूंगा, ये ठीक कहते हो बेवफा हूँ, वफा करूंगा तो क्या करूंगा, बस एक तू ही तो रह गया है जहां सारा तो खो चुका हूँ, तुझे भी अपनी अना में आकर खफा करूंगा तो क्या करूंगा, ये ठीक कहते हो बेवफा हूँ, वफा करूंगा तो क्या करूंगा, बगैर पानी भी कोई मछली भला कभी रह सकी है प्यारे, मैं तुझे खोकर किसी का होकर बता करूंगा तो क्या करूंगा, ये ठीक कहते हो बेवफा हूँ, वफा करूंगा तो क्या करूंगा, हजार सजदे तो कर चुका हूँ कजा तुम्हारी मोहब्बतों में, मैं अब दिखावे का कोई सजदा अदा करूंगा तो क्या करूंगा, ये ठीक कहते हो बेवफा हूँ, वफा करूंगा तो क्या करूंगा, खुद अपनी खातिर मैं ढंग से कुछ मांग पाया ना रब से, तुम्हारी खातिर मैं हाथ उठाकर दुआ करूंगा तो क्या करूंगा, ये ठीक कहते हो बेवफा हूँ, वफा करूंगा तो क्या करूंगा, मैं नफरतों के जहां में रहकर जुदा रहूंगा तो क्या करूंगा। थैंक यू प्रवीण जी, अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर।
0: बात है, मैं बेवफा हूँ, वफा करूंगा तो क्या करूंगा, कमाल। अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर। और अब यहाँ पर कल्पना ने क्या कहा है, द स्टोरी इज दैट द मून, चंद्र, नोन फॉर इट्स ब्यूटी, हैड मॉक्ड गणेशा। कहते हैं चांद इतना खूबसूरत था और इसने गणेश का मजाक उड़ाया है। व्हेन गणेशा हैड अ फॉल फ्रॉम हिज रथ आफ्टर अ हैवी मील, कहते बहुत ज्यादा खा लिया था गणेश ने, वो जरा गिर गए, तो ये जो चांद है ना, इसने गणेश का मजाक किया। गणेश कर्स्ड हिम, एनीवन हु सीज द मून ऑन दिस डे विल फेस फॉल्स एलिगेशंस और एक्यूजेशंस। तब से श्राप दिया है गणेश ने, कहा कि बद्दुआ मैं देता हूं, जो भी ये इस चांद को देखेगा ना आज के दिन, मैं कहता हूं उस पर कितने इल्जामात लगेंगे, एलिगेशंस, एक्यूजेशंस, उस पर आरोप लगेंगे। इट इज कॉल्ड मिथ्या दोषा। अच्छा, ये कहानी पहली बार मैंने सुनी है। के थैंक यू। और सलीम मेहर इन लंदन।
3: अस्सलामु अलैकुम प्रवीण जी, सलीम मेहर फ्रॉम लंदन। You are strong when you know your weaknesses. You are beautiful when you appreciate your flaws. You are wise when you learn from your mistakes. Good morning, Pravinji, to you and all your lovely Bemisar listeners. Have a lovely day.
0: Thank you, Salim Meher. Ritu Gupta.
4: Pravinji, namaskar. प्रवीण जी, पता क्यों लोग बोलते हैं अभी गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना मना है? ये ना एक पुरानी कथा है, ये जो ना चंद्र देव थे ना, उन्होंने ना गणेश जी का ना वो जो क्या बोलते हैं वो सूंड वाला मुंह, यानी कि ट्रंक बोलते हैं, और उनका बड़ा पेट देखकर बहुत मजाक उड़ाया था। तो गणेश जी ने इसको श्राप दिया था कि आज के दिन जो चांद को देखेगा ना उस पे बहुत बड़ा कलंक लगेगा। लेकिन बाद में चंद्र देवता ने माफी भी गणेश से मांगी थी, तो थोड़ा उन्होंने गणेश जी ने ना उनका श्राप थोड़ा कम कर दिया था, ऐसा जैसे कि हमने भी पढ़ा है, लेकिन हर की अपनी अपनी मान्यता है। ऋतु गुप्ता।
0: अच्छा, चांद और गणेश की ये कहानी, और ये क्लैश था चांद का। ओके वाह। और मनहर पटेल,
5: अगर चांद के सामने देखने से कलंक लगता है तो वो तो अपना मामा था, चंदा मामा, तो मामा थोड़ा भांजे को कलंक लगाएंगे मेरे ख्याल से। जब दूसरे में ऐसा होता है तो आपको पता नहीं है, लेकिन अपने तो चंदा मामा बोलते हैं ना, तो मामा तो भांजे के लिए अच्छा होता है। थैंक यू मनहर पटेल फ्रॉम पेरिस।
0: इसलिए उसने माफी भी मांग ली है, चंदा मामा दूर के। ओके अमीर अली ने, प्रवीण जी इज इट बैड ओमन टू सी द मून टुडे, बट चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। या अमीर अली राना, बिल्कुल सही। अब अशोक ने जो कहा है, मैं एक गाने के बाद

0: अच्छा कृष्ण सरोय कह रहे थे कि पता है क्या, मदरसों को इसलिए बंद किया है, इतनी बुरी हालत है, इनके दरवाजे टूटे हुए, खिड़कियां टूटी हुई, और फिर जिस तरह की वो टीचिंग कर रहे थे ठीक नहीं थी, ये एजुकेशनल लेवल तालीम का जो मायार है इसको ऊंचा करना है, इसलिए मदरसों को बंद कर दिए। दरअसल समीन बात यह है कि मजहबी आज़ादी पे जब कदगन लग जाए तो फिर यह करना पड़ता है, मजहबी आज़ादी को कुचलना है तो ये करना ही पड़ेगा कि मजहब, कोई भी मजहब हो, वो आज़ादी से अपनी इंस्टीट्यूशंस ना चला सके।
1: प्रवीण जी नमस्ते, सभी सुनने वाले को नमस्ते, मनोहर पटेल और प्यारा भी। इस क्वेश्चन का जवाब मेरा नहीं है, मेरे पास नहीं है, ये तो ठीक से जानता नहीं मैं क्या होता है चांद देखने से, चांद तो निकलते ही रहता है, लेकिन आप सोचो कि जिसका जन्म होता है इस दिन, या मैं तो जानता सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो जिसका जन्म होता है वो लोग बहुत बहुत लकी होते हैं। एक है ये और एक है 22 जनवरी से 22 फरवरी तक, वो लोग बहुत बहुत लकी आदमी होते हैं। वो जो बाकी है मुझे पता नहीं, हो सकता है वो लकी होता है या नहीं, लेकिन क्या क्या बोलेंगे आज का दिन का। थैंक यू।
0: वो कह रहे हैं कि ये चांद की जो बात है मुझे नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है, बिल्कुल ये। और हमारे पास तस्वीरें भी आई हैं, और ये किसने भेजी हैं, स्नीता हैं कोई, सॉरी सेंड बट वांटेड टू शेयर विद यू, ओके। देखते हैं कि फिर ये क्या हैं। तो समीन जी, अगर आप मानते हैं कि ऐसा देखने से, तो फिर लोग कुछ डरते भी होंगे ना, नहीं देखेंगे आज के दिन चांद की तरह, बेशक मानते ना भी हों।
2: East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: Hello, future. I would like to tell you.
4: Hi, future. Can I tell you something?
5: Hey, future. There is something I want to tell you.
4: Dear future, I wish to tell you something.
6: This week, we want you to talk to your future generation. We are doing this because we know all you do is to ensure they will have a secure future. And Britam Trust Fund offers that security by managing your assets to ensure they will keep providing for your loved ones even when you are gone.
7: Dear future, I wish to tell you something.
6: Let's secure your family's future this week on Breakfast with Rehmat and Jameel with Britam, your friend for life.
8: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
9: Nairobi Sports House brings you magnificent range of Shogun fireworks to light up your Diwali. Get your Shogun fireworks and gifts from one-stop Diwali shop at Ram Mandir, Banderi Road, Parklands, also Sri Icon 3rd Parklands, Sri Gurdwara Ramgarhia Railway South Sea, Nairobi Sports House, Mombasa branches, City Mall, Niali, Faza and Likoni Mall.
10: Shape your future at Uniserve Education September Fair. Meet representatives from over 100 top universities worldwide. Explore undergraduate and postgraduate opportunities, scholarships and life abroad. Eldoret, Rupa's Mall, Tuesday, 22nd September. Mombasa, Bliss Resort, Wednesday, 23rd September. And Nairobi, JW Marriott, Saturday, 26th September from 10 a.m. Entry free. Uniserve Education. Master your own destiny.
2: More of Kenya's premier Asian mix. East FM. We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: और समय कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई लड़का लड़की पे आशिक हो जाए तो वो कम ही गिफ्ट देता है, दूसरी ओर कोई और होगा वो भंडार लगा देगा तोहफों का। अब हुआ क्या है, फेलिशिया ली को एक कम अकल आशिक ने इतने महंगे तोहफे दे दिए, कहाँ प्राडा, डियोर, खुशबुएं, हवाई जहाज का फर्स्ट क्लास का टिकट, हजारों डॉलर लुटा दिए, लाइफ इंश्योरेंस करवा दी। एक यूनिवर्सिटी में वो कहने लगी मुझे एक प्रोग्राम करना है, वहाँ दाखला कोई मुफ्त तो नहीं ना होता, वो अदा कर दिया। अब ये फेलिशिया ली जो हैं, इनका फ्लैट है, उसके लिए फेंग शुई के जो मास्टर हैं वो बुलवा लिए कि स्पिरिचुअलिटी के साथ सजे ये जो फ्लैट है ली का। अब ये सब किया है किसने, समझ, वो भारतीय निजाद हैं चंदर अग्रवाल, इन्होंने 370,000 डॉलर के गिफ्ट्स वापस मांग लिए हैं गर्लफ्रेंड से। लेकिन अदालत ने अग्रवाल से कहा है कि ब्रेकअप के बाद भी एक भी गिफ्ट वापस नहीं होगा, केस इज डिसमिस्ड, ये तोहफे तोहफे हैं, ये कोई कर्ज नहीं है। समीर अग्रवाल एक इंडियन लॉजिस्टिक्स कंपनी के सीईओ हैं, ली फ्लाइट अटेंडेंट। अब आप देख सकते हैं कि समीर इनका पेशा कैसा है, वो ले उड़ी हैं अग्रवाल के लाखों हवा में उड़ते उड़ते, और ताल्लुक एक साल भी नहीं रहा, बेवफाई शुरू कर दी। समीर ये होता ही है, काफी धोखाबाजी हो जाती है मर्दों के साथ इस बात को लेकर। और शैलेश और शीला ने क्या कहना है।
1: हाय परवीन जी, आपने भी गाना लगाया ना, वो दिन याद करो, वो फूलों का खिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो, ये गाना हमारा फेवरेट है। थैंक यू वेरी मच शीला एंड शैलेश।
0: बहुत अच्छे। और रोशन खान जी कहते हैं कि ब्लैक मॉर्निंग चला गया है, ये शो कितना एंजॉयबल है।

0: सर्वेलेंस बढ़ा दी गई है, स्पेशलाइज्ड लैब्स भेज दिए गए हैं। कल रात कमगुंडा किलकिल नकुरु सड़क पर दो गाड़ियों के टकराव से 5 मुसाफिर जान बहक हो गए। वहां गिलगिल में भी नकुरु नायवाशा सड़क पर हादसा होने से 5 का निधन हो गया। इजी कोच बस और निजी गाड़ी में तसादम हुआ था। आलमी खबरें। एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सरबरा ने मांग की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स की तरक्की को रोका जाए, इनकी निगरानी हो, इसलिए कि इसके साथ खतरनाक नतायज जुड़े हैं। डारियो अमोडे के एक रिसर्चर के मुताबिक आते 2 बरस इंसानी आबादी के लिए तश्वीशनाक हैं। एआई कंपनी के बानियों को भी फिक्र है कि एआई मॉडल्स इंसान के खात्मे का कारण बन सकते हैं। पंजाब विधानसभा स्पीकर के घर के सामने आज किसान एहतजाज कर रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा हुक्मरान पार्टी से टक्कर ले रहा है। 7 मंत्रियों के घरों के सामने धरना दिया जाएगा बिजली और खाद की तंगी की वजह से। खेतों के मुलाजमीन का कर्जा माफ करने की भी मांग कर रहे हैं पंजाब के किसान। जिंदल स्टील कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनाकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ये प्रोसेस्ड स्टील स्लैग से बनाई गई है, करीब 2 किलोमीटर लंबी और छत्तीसगढ़ में वाकया है। सड़क का उद्घाटन वर्चुअली किया साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। चिली में अगस्तो पिनोशे के 1973 से 90 के दौर में हुए कत्लेआम के खिलाफ जनता ने धरने दिए। 280 से ज्यादा शहरी गिरफ्तार हो गए। 1973 सितंबर में पिनोशे ने सदर साल्वाडोर अलेंडे की हुकूमत छीनी थी। और इंडोनेशियन फेरी 240 मुसाफिरों के साथ डूब गई खराब मौसम में जावा समंदर में। 107 को बचा लिया गया, 6 की लाशें बरामद हुई हैं। ईस्ट जावा सूर्याबाया से रवाना हुई थी फेरी, 3 मीटर ऊंची लहरों में गिर गई। ये थी आज की खबरें, मैं हूं परवीन आदम।
1: Retro to right now on East FM, Kenya's premier Asian mix.

बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।